तेज प्रचंड ज्योति मंडन पा प्रभं सुख संता कारणन दुर्मत दानन किल विकार आसान जय जय जगकार।